संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल

वे सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विफल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए, जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

आकाशवाणी गायक वृंदना स्वर्मा देशभक्ति गीत आप सांभळी रह्या हता। आकाशवाणीनुं आ अमदावाद वडोदरा केन्द्र छे। बराबर 8 कलाके आकाशवाणीना दिल्ली केन्द्र परथी समाचार प्रभात अने 8:15 मॉर्निंग न्यूज आप सांभळशो। प्रतीक्षा समाचारनी।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने

0: अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
0: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने

0: के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी,

0: अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
4: योगा

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी दोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, खेती करने

0: का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है।
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
0: क्या बात है। श्रोताओ, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
0: जी
1: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
0: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
0: जी
1: यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
0: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।

0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
1: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
2: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।

0: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
1: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
2: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
1: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
3: जी महाराज, बहुत
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
2: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
1: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
2: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
2: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
2: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
6: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
7: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है
6: यार, क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली,
7: नकली
6: कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
8: महाराज की जय।
2: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
2: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: जी धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
2: क्या? और कोई शंका?
1: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
2: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
9: महाराज की जय।
2: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों,

0: हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
3: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई

आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं, वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी।

0: संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

नेव वर्ष। जी हाँ दोस्तों, आज नेव वर्षे पण अडीखम उभी छे आपणी आकाशवाणी। समय बदलायो, संजोगो बदलाया, परिवर्तननी नवी लहेरो उठी, पण आकाशवाणीए हमेशा भारतीय संस्कृति अने परंपराने मान आप्यो, तेनू जतन कर्यो। वेदोनी रुचाओ जेटली स्पष्ट छे तेवी ज रीते आकाशवाणीनी वाणीनो प्रवाह पण एटलो ज स्पष्ट छे। खड़ खड़ वहता झरणानो नाद जेम मनमोहक होय छे, तेम आकाशवाणीनी वाणीनो नाद पण मीठो, मधुरो अने मनने शांति आपनारो छे। श्रोताओनो अथाग प्रेम भाव अमारामां रोज एक नवी शक्तिनो संचार करे छे। आज सुधी सतत आपनी पड़खे उभेली आकाशवाणी 90 वर्षे पण अडीखम छे। आओ आपणे सौ साथे मळीने आकाशवाणीना 90 वर्षनी भव्य उजवणी करिए अने उज्ज्वल भविष्यनो संकल्प करिए।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 जून 1936 थी आपनी सेवा में रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आजे समग्र भारत में लगभग 591 स्टेशनों संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत ना 92% भौगोलिक विस्तार में 99% जेटली वस्ती ने आवरी ले छे। देश ना ग्रामीण शहरी अने सरहदी विस्तारों में 23 भाषाओ अने 182 जेटली बोलियों द्वारा राष्ट्रीय अने प्रादेशिक कार्यक्रमों पहुंचाड़ी रही है।

0: न्यूज़ हेडलाइंस खां पोइ दोस्तो आवां जो स्वागत था करियूं सिंधी कार्यक्रम सुरहाण में। ॿुधंदो दोस्तो, अॼु सुरहाण कार्यक्रम में जीअं त अव्हां खे ख़बर ई आहे त आकाशवाणी पंहिंजी शानदार 90 सालनि जी यात्रा हिन ईंदड़ 8 जून ते पूरी करे रही आहे। 1936 में 8 जून ते आकाशवाणीअ जी शुरूआत थी हुई। त इन यात्रा दौरान आकाशवाणीअ सां केतिरा ई कलाकार, केतिरा ई लेखक, संगीत सां जुड़ियल हस्तियूं, उन्हनि न सिर्फ़ पंहिंजी कला जो मुज़ाहिरो आकाशवाणीअ ज़रिए कयो, पर पंहिंजी कला खे अञा बि अॻिते वधायो, फैलाव कयो ऐं कुझु न कुझु इन सफ़र दौरान सिखंदा बि रहिया। असांजे आकाशवाणीअ जे स्टूडियो में असां अॼु नींड ॾिनी आहे अहिड़ी शख़्सियत खे, जिन अलॻि अलॻि हैसियत में, चाहे उहा कलाकार जे रूप में उन्हनि जी ॻाल्हि कजे, या हिकु लेखक जे रूप में, नाटककार जे रूप में, या कहाणीकार जे रूप में, अहिड़ी हिकु शख़्सियत असांजे स्टूडियो में हाज़िर आहिनि। नमस्ते डॉक्टर ॾेठो लालवाणी साहिब।
1: नमस्ते सुनीता भेण।
0: जीअं त 90 सालनि जी असांजी आकाशवाणीअ जी शानदार यात्रा रही आहे ऐं उन जा गवाह तव्हां बि रहिया आहियो, त तव्हीं ॿुधाईंदा त तव्हीं आकाशवाणीअ सां कॾहिं ऐं कीअं जुड़िया?
1: भेण सुनीता, जीअं तव्हां ॿुधायो त आकाशवाणीअ जी 90 सालनि जी जेका हिकु शानदार यात्रा रही आहे, अहिड़े ई जॾहिं खां सिंधी प्रोग्राम अहमदाबाद खां शुरू थियो तॾहिं खां वठी सिंधी प्रोग्राम सेक्शन जी बि आकाशवाणीअ जे हवाले सां हिकिड़ी तमामु घणी शानदार हिकिड़ी यात्रा, तरक़ी, फैलाव, लोकप्रियता रही आहे, जंहिंजे ज़रिए न सिर्फ़ु सिंधी कला, संस्कृति, म्यूज़िक, पर असांजी संस्कृति, असांजा ॾिण वार, असांजा नाटक, असांजा बाल साहित्य ते, माना हर सनफ ते, जेकॾहिं चइजे त असांजी हर सनफ खे आकाशवाणीअ न सिर्फ़ु अहमदाबाद ताईं

0: पर अहमदाबाद खां ॿाहिरि गुजरात खां ॿाहिरि वेंदे सिंधु पाकिस्तान ताईं बि सिंधी अदब खे ऐं सिंधी कलाकारनि खे लोकप्रियता बख़्शी।
1: जी
0: ऐं जेसि ताईं मुंहिंजे आकाशवाणी सां जुड़ण जो वास्तो आहे त सभिनी खां पहिरीं मां एज़ अ कलाकार ऐं एज़ अ लेखक,
1: अच्छा
0: नाटककार, नाटक लेखक जे हैसियत में जुड़ियुसि। तव्हां चवंदव उहो कीअं? टिनि ॾींहंनि में अञा के नाटकनि जूं ऑडिशन्स त थींदियूं हुयूं, पर मां अञा ऑडिशन में भाग कोन वरितो हो।
1: जी, जी।
0: पर उन वक़्तु आकाशवाणी ऐं असांजे जुदा जुदा जेके अदबी संस्थाऊं हूंदियूं हुयूं उन्हनि खे, जेको अदबी जी संस्थाउनि खे, कला संस्थाऊं जेके हूंदियूं हुयूं उन्हनि खे जुदा जुदा ॾिणनि ते, जुदा जुदा ॾिण वारनि ते उन्हनि खे ख़ासि प्रोग्राम ॾियण जे लाइ नींड ॾींदियूं हुयूं। ऐं उन में ईअं हूंदो हो त उहे रचना बि उहे पाण खणी ईंदा, नाटक जेका पेशकारणी हूंदी हुई, कलाकार जब उन्हनि जा हूंदा ई हुआ, जंहिंखे ग्रुप कॉन्टेक्ट चइजे त उन में ॾिनो ॾींदा हुआ। त अहिड़े ई नमूने असांजी सिंधी साहित्य कला निकेतन, जेका तमामु झूनी हिकिड़ी संस्था हुई जंहिंजो सदर किरत मेरचंदाणी हो, त उनखे हिकिड़ो प्रोग्राम मिलियो ॾियारीअ जे ॾींहंनि में, जेको आहे ॾियारीअ जे हवाले सां हिकु प्रोग्राम मिलियो हो। तॾहिं जॾहिं उहो प्रोग्राम हुनखे मिलियो त असांजे किरत मणिचंदाणी जी इहा इच्छा थी त भई मां हुन ॾियारीअ ते, ॾियारीअ जे हवाले सां हिकु नंढो जेको आहे सो नाटक लिखां। तॾहिं मूं उन वक़्तु 26 जा ॿेर,
1: अच्छा,
0: जंहिंखे असीं अनटचेबिलिटी चऊं था, उनखे खणी करे, छाकाणि हिकिड़ो विषय बि न हो ऐं हुई, त उहो मूं नाटक न सिर्फ़ु लिखियो पर उन में जेको आहे सो मूंखे मेन रोल, राम जो रोल करण जो मूंखे मौक़ो मिलियो। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधायां त उन वक़्तु असांजी जेका अनाउंसर हूंदी हुई आशा मनशा रमाणी, उन में आशा मनशा रमाणीअ खे जेतोणीकि असांजे ग्रुप जो कॉन्टेक्ट हो
1: जी,
0: पर असां किरत मेरचंदाणीअ उनखे शबरीअ जे रोल में
1: बराबरि
0: पेश कयो हो। त सभिनी खां पहिरीं मां ईअं चवां त जेका पहिरीं अनाउंसर हुई हितां जी लोकप्रिय अनाउंसर, उन सां गॾु मूंखे जेको आहे सो एज़ अ राम जो ऐं शबरीअ जो मौक़ो मिलियो ईअं।
1: अच्छा, जेको तव्हांजो सफ़र रहियो आहे, तव्हां अनगिनत रचनाऊं पंहिंजूं, चाहे उहे तव्हांजा लेख हुजनि या तव्हांजा लिखियल नाटक हुजनि, बाल नाटक हुजनि, ऐं उनखां सवाइ कहाणियूं बि जजियूं तव्हां आकाशवाणीअ जे द्वारा पेश बि कयूं आहिनि। हिकु ॻाल्हि ज़हन में अचे थी त हेतिरियूं रचनाऊं तव्हां रचियूं, तव्हां सिरजणहार आहियो उन्हनि रचनाउनि जा, नाटकनि जा, कहाणियुनि जा, के तव्हांजा पसंदीदा या तव्हांखे ईअं लॻंदो हुजे त इहा हिकु अद्भुत रचना मूंखां कंहिं लिखाराई, या का ग़ैबी शक्ति आहे जंहिं मूंखां इहा लिखाराई, अहिड़ी का यादगार रचना उन जे बारे में ॿुधाईंदा?
0: मूंखे ॿुधाईंदे इहा ॾाढी ख़ुशी थी थिए त मुंहिंजे अदबी सफ़र में, मुंहिंजे कलाकार जे सफ़र में ऐं नाट्य लेखन जे सफ़र में, बाक़ी जिन सनफनि जो तव्हां ज़िक्र कयो, पर जेको ख़ासि करे मां नाटक जे हवाले सां ॻाल्हायां ऐं एज़ अ कलाकार जे हैसियत में जेकॾहिं मां ॻाल्हायां त मुंहिंजे जीवन जा जेके यादगार पल रहिया आहिनि या यादगार ॻाल्हियूं रहियूं आहिनि या जंहिं मूंखे सही मन में जीवन जीअणु सेखारियो आहे, छो त नाटक लिखण वक़्तु असांखे जुदा जुदा कलाकारनि जो, जुदा जुदा असांखे किरदारनि जो जेको आहे सो जीवन खणी करे जीअणो पवंदो आहे, लिखणो पवंदो आहे, माणणो पवंदो आहे। साॻे नमूने जॾहिं असीं नाटक करणु अचूं था आकाशवाणी ते, कंदा करणु ईंदासीं त जुदा जुदा रोल असां कयासीं, माना उहा जेका जीअण जी कला आहे, जुदा जुदा रोल निभाइण जी कला आहे, ऐं जंहिंमें उन में बि ख़ासि करे जेको आहे सो डायलॉग चवण जो जेको अंदाज़ थिए थो, जुदा जुदा रोल करण सां तव्हांखे ख़बर आहे त उन गुफ़्तगुअ खे, असांजी असांजी शख़्सियत खे, असांजे वीचारधारा खे, उन में मां चई सघां थो त वॾे में वॾो रोल जेकॾहिं मुंहिंजो रहियो आहे त उहो असांजे आकाशवाणी जो रहियो आहे। छो त जॾहिं मां अञा किताब छपणु शुरू कोन कया हुआ तॾहिं मुंहिंजा जेको आहे आकाशवाणी तां मूंखे मौक़ा मिलंदा रहिया एज़ अ कलाकार जी हैसियत में ऐं साण गॾु लेखन जी हैसियत में, त उहे वरी जेके रचनाऊं आहिनि मुंहिंजियूं सॼे हिंदुस्तान जे जुदा जुदा रचना उन्हनि में मैगज़ीन्स में किताबनि खां अॻु छपजंदियूं हुयूं, न सिर्फ़ु छपजंदियूं हुयूं पर जेके मुंहिंजा नाटक हुआ उहे सिर्फ़ु नाटक

0: या जेके टॉक्स जंहिंखे चइजे, असीं चऊं जेके अदबी गुफ़्तार चइजे, उहे जेके हिते असांजूं रिकॉर्ड थींदियूं हुयूं, उहे न सिर्फ़ु अहमदाबाद मां पर आकाशवाणी दिल्लीअ तां, जयपुर तां, भुज तां बि, ऐं वक़्ती जेको आहे सो असांजा मुंबई वारा बि घुराए करे उन्हनि खे प्रसारित कंदा हुआ, रीरिक करे कंदा हुआ। त ईअं मां चवां त भई मूंखे जेकॾहिं अदबी खेत्र में जेका वध में वधि मञता लोकप्रियता या माहिरियत हासिलु करण में जेकॾहिं वध में वॾो रूप रहियो आहे त उहो असांजे आकाशवाणीअ जो रहियो आहे। अहिड़ियूं केतिरियूं रचनाऊं आहिनि, कहाणियूं आहिनि, नाटक आहिनि, जिन जो मां कहिड़ो ज़िक्र कयां, पर हाणे ॻाल्हि निकिती आहे त मां नाटक जे हवाले सां थोरो ॻाल्हाइणु चाहींदुसि। त जेके नाटक मुंहिंजा न सिर्फ़ु असांजे अहमदाबाद गुजरात में पर सॼी हिंदुस्तान में लोकप्रिय थिया, जेके मूं पहिरीं आकाशवाणी नाटक करे लिखिया, पोइ उहे ई नाटक जेको आहे सो रंगमंच ते बि जुदा जुदा ग्रुपनि जे तरफ़ां आया। हाणे उन्हनि में जेको सभिनी खां पहिरीं नाटक जेको हो ऐं जंहिंखे वरी उन नाटक खे इनाम बि मिलियो हो, उहो हो तुंहिंजा ग़म मुंहिंजा आहिनि।
1: अच्छा,
0: उहो जॾहिं नाटक आयो तॾहिं मूंखे इहो ई नाटक किरत मेहतदाणी स्टेज ते कयो हो ऐं उनखे फस्ट प्राइज चटाभेटीअ में मिलियो हो। ऐं ॿियो असांजो नाटक हो कोई बि न बचंदो,
1: बराबरि,
0: जेको एक्चुअली थ्री एक्ट प्ले हो पर उनखे असां वन एक्ट प्ले जे रूप में आकाशवाणी जे रूप में स्टेज ते बि पेश कयोसीं ऐं हिन ते बि कयोसीं। तंहिंखां पोइ जेके ॿिया नाटक आहिनि जिन में तव्हां बि कमु कयो हो, जेको त वधीक लोकप्रिय रहियो, जेको जंहिंजो उहो ज़िक्र सिंधी फिल्म प्यार जा रंग में बि उहो एपिसोड दोहरायो वियो, सोना कंगण, तंहिंखां पोइ उमिरि मारी शाह लतीफ़ जी जेका उमिरि मारी आहे, जंहिंजो हिंदुस्तान में पहिरियों पपेट नाटक
1: बिल्कुलु
0: ठहियो, जंहिंमें बि तव्हांजो हिकिड़ो तमामु वॾो रोल रहियो हो। तंहिंखां पोइ आख़िरी सिंधी जेको हिकिड़ो अनोखो नाटक हो, जंहिंमें इहो ॾेखारियल हो त अॼु सिंधीअ जी हालति हीअ आहे भारत में, त 300-400 सालनि खां पोइ असांजे सिंधीअ जी हालति कहिड़ी थींदी। ऐं आख़िरी सिंधी नाटक जी हिकिड़ी ख़ासि ख़ूबी हुई त AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंहिंखे असीं चऊं था, त उन्हीअ में सभिनी खां पहिरीं जेको आहे सो रोबोट जे रोल में, रोबोट जेको आहे AI जो जेको आहे सो मूं उन में जेको आहे सो रोल हिकिड़ो अदा आदो, ऐं साइकिक कंप्यूटर जेको अॼु ॾींहं ताईं अञा पैदा थी पियो, उनखे करदार करे मूं उनखे उन में आंदो। ऐं सिंधीअ में जेको डॉल जंहिंखे चइजे, डॉल खणी करे भई कीअं माण्हू जेके ग्रस्त जीवन में सुखी न आहिनि ऐं जेको आहे सो कीअं हथरादू डॉल्स मां जेको आहे सो कनि था, उहो बि मूं नाटक में आंदो। तंहिंखां पोइ हो सरव जो पन, तंहिंखां पोइ तिलाक ऐं अप्रैल फूल, इहे कुझु नाटक यादि आहिनि। ऐं नाटक त घणी ओबारियूं लाइ वारी बि तमामु घणी, ऐं जीअं तूं हलाई
1: बराबरि,
0: इहो ख़ासि नाटक तव्हां मूंखां लिखायो हो चेटीचंड जे हवाले सां, त झूलेलाल जे चेटीचंड जी कहिड़ी अहमियत आहे, ऐं उन ते वरी पोइ मूं कहाणी बि लिखी। त अहिड़ा कुझु यादगार नाटक आहिनि। पर जेकॾहिं मां सीरियल जे हवाले सां ॻाल्हायां त जेका मूंखे वध में वधि साइंस फिक्शन जंहिंखे चइजे, साइंस फिक्शन सिंधीअ में लिखण जो जेको मूंखे मौक़ो मिलियो, उहो मूंखे आकाशवाणीअ ॾे, ऐं उहो बि हिकु अहिड़े विषय ते जेको सॼी दुनिया में हिकु मौतमार बीमारी हुई, एड्स।
1: बिल्कुलु,
0: एड्स जो एॾो उन वक़्तु हाऊ हो, एॾो डपु हो, हरास हो, ऐं सॼी हिन दुनिया में ख़ासि करे इंडिया में वधीक हरास फैलियल हो। तॾहिं उन वक़्तु आकाशवाणीअ खे जागी ऐं उनखे आयो त हिन विषय ते खणी करे असीं भई जेको आहे सो सीरियल लिखूं, ऐं मूंखे ख़ुशी आहे त जॾहिं उन्हनि जुदा जुदा राइटर्स खां एपिसोड्स घुराया हुआ, पर जेका मञता जी मुहर जेका लॻायऊं उहा मुंहिंजे एड्स जे सीरे ते, खूनी चंबो उनजो नालो रखियो वियो, खूनी चंबो, ऐं मूंखे 7 एपिसोड ऐं साइंस फिक्शन तव्हां सम्झो था, ऐं बीमारीअ ते लिखणु तव्हां पंहिंजे लिखे, ऐं वरी उनखे मनोरंजन जे हवाले सां ऐं आम माण्हूअ खे सम्झ में अचे उन जे हवाले सां, इहो हिकिड़ो मूंखे नओं मौक़ो ॾिनो। छो त लिखण जो बि मूंखे हिकिड़ो नओं मौक़ो मिलियो, त मां उहो मूं जेको आहे सो अभ्यास करे लिखियो, ऐं उहा सीरियल हितां रिकॉर्डिंग अहमदाबाद में थींदी हुई, ब्रॉडकास्ट जेको

0: पासो यकदम वेंदा हुआ।
1: जी
0: साॻे ई नमूने असांजी आकाशवाणी हिकिड़ा तमामु घणा छा चवंदा आहिनि तजुर्बा बि कया
1: बिल्कुलु
0: हुआ,
1: बिल्कुलु
0: भई माण्हुनि जी लोकप्रियता खे ॾिसी करे उन वक़्तु आकाशवाणी जी पहुच छाकाणि जो ॻोठनि ताईं हूंदी हुई, दूर दूर दराज़नि ताईं पहुची वेंदी हुई। त जेके ॻोठनि में सिंधी रहनि था या दूर दूर दराज़नि में सिंधी रहंदा हुआ, भई उन्हनि जे विषयनि खे खणी करे या उन्हनि जी पहुच खे पहुची करे त सिंधी कल्चर खे उते पहुचाइजे, या सिंधी असांजा मिसाल आहिनि जेके असांजूं रीतियूं जेके रीतियूं रस्मियूं आहिनि उन्हनि खे सिंधियुनि ताईं पहुचाइजे, जंहिंमें तइलीम बि अची थी वञे। तैलीम जो ख़ासि करे सिंधियत जे विकास जे लाइ असांजी कला अचे थी, असांजी संस्कृति अचे थी, असांजा ॾिण वार अचनि था, त हुन जे लाइ हिन असांजी आकाशवाणी सीरियल शुरू कई हुई नारूमल पारूमल।
1: बराबरि।
0: हाणे जीअं त तव्हां ख़बर आहे त मुंहिंजो विषय बि लोक अदब रहियो आहे, ऐं तव्हांजे शुभकामनाउनि सां मूं जेका PhD कई आहे उहा बि बनीअ जो सिंधी लोकगीतनि ते, ऐं उन जे हवाले सां त जॾहिं हिननि इहा पारूम नारूमल पारूमल सिंधी संस्कृतीअ खे खणी करे, सिंधी ॾिण वारनि खे खणी करे, सिंधी शादीअ जे रीतियुनि रस्मुनि खे खणी करे, ऐं असांजा जेके ख़ासि जेके संस्कार आहिनि, सोरहं जेके असांजा संस्कार आहिनि जनम खां वठी, उन्हनि संस्कारनि खे खणी करे उन में असां सिंधियुनि जूं रीतियूं रस्मियूं ॿियनि जे हवाले सां ॿियनि कम्युनिटी जे हवाले सां सिंधीअ में कहिड़ो फ़र्क़ु पए थो, ॾिण वारनि में असांखे मल्हाइण में कहिड़ो फ़र्क़ु, ऐं असांजा कहिड़ा निज सिंधी ॾिण आहिनि,
1: बराबरि
0: कहिड़ा असांजा निज सिंधी लोक नृत्य आहिनि।
1: बिल्कुलु, मां तव्हां खां इहो ई पुछण थे चाहियो त जेका हीअ आकाशवाणी जो 90 सालनि जो सफ़र रहियो आहे, त तव्हांखे ईअं नथो लॻे त हुन सिंधी भाषा ऐं सिंधी संस्कृतीअ जे फैलाव जे ॾस में ॾाढी हथी ॾिनी आहे?
0: न सिर्फ़ु हथी ॾिनी आहे पर हुनखे दाइमियत बि ॾिनी। दाइमियत इन करे ॾिनी छाकाणि त जेके असांजी नौजवान पीढ़ी हुई या छाकाणि जो असांखे ॻोठ कोन्हनि, छाकाणि जो संस्कृतीअ खे लोक साहित्य खे लोक अदब खे ॻोठ पालियो प्रिज़र्व कंदा आहिनि, ॿोलीअ खे वधाईंदा आहिनि, पर उहो कमु असांजे ॻोठ न हुजण करे असांजी आकाशवाणीअ कयो। उहे जेको आहे सो ॿुधायोमांसि, भई दूर दराज ॻोठनि ताईं जिते सिंधी रहनि था या जिते अहिड़ा हंधि जिते जेको आहे सो कलाकार या लेखक या मैगज़ीन न पिए पहुची सघूं, वध में वधे आकाशवाणीअ उनखे दाइमियत इन करे ॾिनी, दाइमियत छाकाणि जो हुन में सुजाॻी जेके असां सिंधी तबिके में चेतना जंहिंखे चइजे, ऐं ख़ासि करे नारी चेतना जे हवाले सां, छोकर त असांजे लोक अदब जो लोक अदाउनि जो वास्तो लाॾनि जो वास्तो असांजे लोलियुनि जो वास्तो असांजे नियाणियुनि सां आहे, माताउनि सां आहे, उन्हनि खे बाक़ाइदे यादि ॾियारियो, न सिर्फ़ु यादि ॾियारियो पर जेके लोकप्रिय असांजूं जेके गीत हुआ आहिनि अॼु बि आहिनि, ऐं जेके उन्हनि जे कननि ताईं पहुचाया, उन्हनि जे माण्हुनि ताईं पहुचाया, उन जे घर ताईं पहुचे, उन मां असांखे हिकिड़ो लाभ इहो पियो त जिन खे यादि न हुआ त उहे बि यादि करे पंहिंजनि ॿारनि खे घर में, त इहो जेको हिकिड़ो वॾे में वॾी जेका अहमियत ॾिनी, ऐं उहो कमु मूं जेको आहे सो नारूमल पारूमल सीरियल जे महफ़िल करण जी कोशिशि कई।
1: जीअं तव्हां इहो ॿुधायो कि हिकु असांजी सिंधी जेका संस्कृति आहे या असांजी सिंधी ॿोली आहे उन जे फैलाव जे ॾस में हेॾी हथी दाइमियत तव्हां त उन खां वधी चओ था, पर हिकु ॻाल्हि जीअं तव्हां अलॻि अलॻि जेके सिंधी भाषा सां जुड़ियल आकाशवाणीअ में जेके डायरेक्टर हुया या जेके बि कर्मचारी अनाउंसर हुआ या जॾहिं तव्हां कंहिं कलाकार जी हैसियत में नाटक में कोई किरदारु अदा करे रहियो हो त तव्हांखे अलॻि अलॻि हिदायतकारनि सां बि कमु करण जो मिलियो मौक़ो आकाशवाणीअ ते, त उन में तव्हांजी जेका पंहिंजी शख़्सियत आहे उन में कुझु जुड़ियो, उन ॻाल्हि खे थोरो वाज़े कयो।
0: हाणे मां तव्हांखे इन ॻाल्हि जे हवाले सां हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि चवणु चाहींदुसि, त भुज ते अनाउंसर जी पोस्ट खाली थी हुई, अनाउंसर जी पोस्ट हुन लाइ थोरो ऑल इंडिया लेवल ते हिननि जेको आहे सो घुरायो हुआ, त सभिनी खां पहिरीं जेको आहे सो मूंखे उहो इन इंटरव्यू में शामिलु थियण जो मौक़ो मिलियो, सॼे हिंदुस्तान मां आयल हुआ, ऐं मुंहिंजी इहा ख़ुशकिस्मती बि हुई त मुंहिंजी उते वेटिंग फस्ट।
1: अच्छा।
0: उन खां पोइ मां जीअं अहमदाबाद में हिते आयुसि त हितां उन वक़्तु श्री पोहू निहलाणी
1: जी
0: असांजी आशा मनशा रामाणी या उन वक्त हिते कमेटी ठहियल हूंदी हुई।

0: हिकु सिंधी प्रोग्राम जी एडवाइज़र जे लाइ कमेटी जेको प्रोग्राम ॾिसंदी हुई, जंहिंमें डॉक्टर सी आर गांधी हूंदा हुआ, बी एच आडवाणी हूंदा हुआ।
1: अच्छा,
0: त उन्हनि खे जॾहिं ख़बर पई त भई मुंहिंजी इहा सिलेक्शन हुते थी आहे, त हुननि मूंखे घुराए करे चयो त भई तूं हिते ऑडिशन जो फॉर्म भर, सम्झ। ऐं इन विच में वरी छा थियो, जेसि ताईं मां हिते छाकाणि जेसि ताईं ऑडिशन जो फॉर्म भरिजे, इंटरव्यू थियनि, आवाज़ जी जेका आहे थिए, तेसि ताईं मूंखे भुज मां अदबी गुफ़्तार जे लाइ हिकिड़ो विषय ॾिनऊं त सिंधी साहित्य में मज़ाक,
1: बराबरि
0: विषय ते भई तव्हां पंहिंजा वीचार अहमदाबाद मां रिकॉर्ड कराए असांखे हुते
1: मोकिलियो,
0: हुते मोकिलियो। इहा हिकिड़ी मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि हिकिड़ो आकाशवाणी जो वॾो मौक़ो मिलियो, त भई जेके उन वक़्तु हाज़िर हुआ, जेके उन वक़्तु कर्मचारी हुआ या उहिदनि ते हुआ, उन्हनि मूंखे तमामु घणो प्यारु ॾिनो, मञता ॾिनी ऐं मूंखे सपोर्ट बि ॾिनो, ऐं उन्हनि यकदमि रिकॉर्ड करे उहो ॾेई मोकिले ॾिनो। पर जॾहिं मां उहो मां पहिरियों दफ़ो जॾहिं रिकॉर्ड कराए रहियो हुउसि, छो त उते उन वक़्तु जेके असांजा डायरेक्टर हुआ, हिते प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटिव हुआ, पोहू नियालाणी हुआ, आशा मंशारामाणी हुई, या कुझु सीनियर कलाकार हुआ जिन में असांजो चिमनलाल शर्मा हो, असांजो किरत मिरचंदाणी हो, सुशीला राय सिंघाणी हुई, ॿिया उन्हनि मूंखे डायरेक्शन ॾिनी बाक़ाइदे त भई जेको तूं रेडियो ते नाटक जेको कजे थो या रेडियो ते जंहिंमहिल माइक संभालजे थो उन में ऐं स्टेज ते जेका असीं नाटक कयूं था उनजे माइक में उनजे आवाज़ जी क्वालिटीअ में
1: बिल्कुलु
0: कहिड़े क़िस्म जो फ़र्क़ु पए थो, त उहो जेका ट्रेनिंग जेका आहे मूंखे, मां ईअं चवां त मूंखे उहा ट्रेनिंग बि मूंखे शुरूआती दौर में आकाशवाणी
1: बराबरि,
0: ऐं जंहिंखां पोइ उहो उन ट्रेनिंग सां आहिस्ते आहिस्ते जी शख़्सियत में हिकिड़ो वॾो उहो फैलाव कीअं आयो, छाकाणि त मां भई ॻाल्हाइजे कीअं, डायलॉग कीअं चइजे,
1: मॉड्यूलेशन
0: कीअं वठिजे, मॉड्यूलेशन कीअं अचे, पिच कीअं अचे, त उहा जेका हिकिड़ी मुंहिंजी शख़्सियत में इज़ाफ़ो कयो। उहा सिर्फ़ु मूंखे नाटकनि में कमु कोन आई, पर्सनल लाइफ में जॾहिं टीचिंग करण में या किथे लेक्चर ॾियणु वेंदो हुअसि या किथे अनाउंसमेंट थींदी, त उहा जेका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जंहिंखे चइजे एज़ अ वॉइस क्वालिटीअ जी चइजे, या उन सां गॾु जेको सेंस ऑफ ह्यूमर बि अचे थो, सम्झो उथजे बि ईअं कीअं ॻाल्हाइजे कीअं, ऐं उन सां गॾु हिकिड़ो अदब बि जेको जुड़े थो, त उन में बि मां इहो चवंदुसि त इहो अदब मूंखे आकाशवाणीअ जे या सीनियर जेके माण्हू हुआ आकाशवाणी जे मार्फत मिलियो, जंहिंजे करे अॼु ॾींहं ताईं मां उन्हनि जो तहे दिल शुक्रगुज़ार आहियां। वक़्त पे यादि त कंदा ई आहियूं।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु, आम तरह सां कोई बि इंसान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जा क्लासिस कंदो आहे,
0: सीनियर्स हुआ जिन मूंखे कलाकारनि बि हुआ हुन में जिन बि मूंखे नाटक वक़्तु भई डायलॉग हीअं न चई करे
1: आकाशवाणीअ ते घणा साल अॻु जेको समाचार विभाग आहे जेको जंहिंमां सिंधी बुलेटिन प्रसारित थींदो दिल्ली खां प्रसारित थींदो, चङा साल अॻु उहो दिल्ली खां हिते ट्रांसफर कयो वियो, त उन शुरूआती दौर में जॾहिं हिते उनखे उनजी बदली थी त हिकु वॾी ज़िमेदारी अची वई त न सिर्फ़ समाचार पढ़णो आहे,
0: ट्रांसलेट
1: बि करणो आहे, ऐं अलॻि अलॻि जेके जेके रोज़मरह जा घटनाऊं थियनि थियूं उन्हनि खे कीअं कलम बंद करणो आहे, उहो सभु बि हिकु वॾी ज़िमेदारीअ जो जवाबदारीअ जो कमु आहे, छो त असीं जेका हक़ीक़त आहे उहा ॿुधंदड़नि ताईं सुठे नमूने पहुचाए सघूं, त उहा शुरूआती दौर जी जदोजहद जे बारे में तव्हां ॿुधायो।
0: जॾहिं असांजी न्यूज़ बुलेटिन दिल्लीअ मां हलंदी हुई ऐं उते उन वक़्तु सीनियर असांजा जेके न्यूज़ रीडर हुआ, हीरो ठकर हो, मेघराज गुरनाणी हो ऐं ॿिया हुआ, हरिकांत हो, त उन जे न्यूज़ त असीं उन्हनि जूं ॿुधंदा ई हुआसीं, छो त नयूं नयूं सभु जॾहिं शुरूआत थी सिंधीअ में त हिकिड़ी नई ॻाल्हि बि हुई, ऐं न्यूज़ ॿुधण जो पढ़ण जो त शौक़ु मुंड खां वठी रहियो, अख़बारूं पढ़ंदा ई हुआसीं, पर जॾहिं ॿुधण जो शौक़ु जॾहिं ॿुधणु शुरू थियो त हिकु क़िस्म जो नित नेम ठही वियो, त वैसी न्यूज़ सुबुह या शाम जो कंहिं बि वक़्त ते असीं उन्हनि सां न्यूज़ ॿुधूं,

0: जेकॾहिं न्यूज़ ॿुधंदा हुआसीं जॾहिं त उन्हनि जा जेके ॿुधण जो उनजे पेशकश जो जेको अंदाज़
1: बिल्कुलु
0: ऐं उन्हनि जी जेका ट्रांसलेशन जे ख़ासि करे अंग्रेज़ीअ मां जेके न्यूज़ कुझु सिंधीअ में ट्रांसलेट कंदा हुआ त उन जूं जेके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शुद्ध सिंधी लफ़्ज़ ऐं हाउ टू प्रेज़ेंट भई समाचार अनाउंसमेंट ऐं समाचार कहिड़े नमूने प्रेज़ेंट कजे थो पेश थिए थो ऐं वरी ट्रांसलेशन
1: बिल्कुलु
0: ऐं ट्रांसलेशन बि टाइम सर ट्रांसलेशन
1: बिल्कुलु
0: जेके ख़ासि ख़ासि न्यूज़ बि हेडलाइंस बि अचनि थियूं ऐं वरी उनजो जेको कंटेंट्स बि जेके अंदरि अचनि था त उहे ॼण उहो ॿुधंदे ॿुधंदे हिकिड़ो ज़हन में पंहिंजे लेखे हिकिड़ो ज़हन में हिकु तस्वर थींदे
1: बिल्कुलु
0: ऐं हिकिड़ी आइडिया हिकिड़ी भई भई
1: न्यूज़
0: खाको जंहिंखो अचे थो उहो मुंहिंजे दिमाग़ में अची वियो हो। मां इन विच में जेको आहे सो दिल्ली सिंधी अकादमी में सेक्रेटरी तौरु वियोसि हुते त हुते असांजो सिंधी न्यूज़ जे हेड दिल्लीअ जो हीरो ठकुर हो त उन हिकु ॿ दफ़ो मूंखे ईअं मौक़ो ॾिनो त भई माना अनऑफिशियली मौक़ो ॾिनो त भई तूं अची करे हिते न्यूज़ ट्रांसलेट कीअं कजनि थियूं जंहिंमें वॾा वॾा असांजा जेका सो असांजो मोतीलाल जोतवाणी या असांजा जेको आहे सो डॉक्टर मुरलीधर जेटले ठाकुर इहे वॾा त उहे भई न्यूज़ कीअं ट्रांसलेट थियनि थियूं त उते वेही करे मां पंहिंजे शौक़ ख़ातिर ऐं ईअं ई त भई उहो वेही करे त उहा हिन हिकिड़ी चुनग जंहिंखे चइजे भई इहा ख़बर कोन हुई त जंहिं ॻाल्हि जे लाइ उते ॻाल्हि थिए थी उहा को अहमदाबाद में अची वेंदी
1: बराबरि
0: त जीअं अहमदाबाद में न्यूज़ अचण जी ॻाल्हि ॿुधीसीं त भई अहमदाबाद अचे थी त उहा ओचितो आई
1: बिल्कुलु
0: ऐं एतिरी ओचितो आई ऐं ईअं आई त भई जीअं सुभाणे खां वठी ॼण हिनखे अमल में आणणो आहे त हिते जेके हुआ हेड उन्हनि खे सोचणो पियो पोइ उन्हनि सलाहूं कयूं त उन्हनि खे इहा सलाह ॾिनी वई त भई छाकाणि त जेके ड्रामा आर्टिस्ट तव्हांजो अप्रूव्ड थियल आहिनि ऐं रफ़ीक साहिबु जेको आहे बेड़ो रफ़ीक उहो त अनाउंसर जी हैसियत में एज़ अ डायरेक्टर हैसियत में सिंध में उन में जेको आहे उहो आहे जेको आहे ऐं हीअ छाकाणि त असां ट्रांसलेशन किताब कया हुआ
1: बिल्कुलु
0: उन वक़्तु कहाणियूं नाटक असीं ट्रांसलेट त उन्हनि सभिनी खां पहिरीं जेको नालो रफ़ीक ऐं मुंहिंजो त पोइ असीं आयासीं ऐं सभिनी खां पहिरीं पर उन वक़्तु तकलीफ़ इहा हुई त छाकाणि जो दिल्लीअ मां न्यूज़ ईंदियूं हुयूं ऐं दिल्लीअ मां न्यूज़ अचनि ऐं टाइम्स न अचनि त जेॾीमहिल टाइम न्यूज़ जो टाइम थी वञे त उन खां अॻु उहे टाइम न्यूज़ ट्रांसलेट करणियूं
1: बिल्कुलु
0: वरी उन में चुकूं न थियनि लफ़्ज़नि जी चुकूं न थियनि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जी चुकूं न थियनि त उनखे वरी हिकु दफ़ो नज़र मां कढणु
1: बिल्कुलु
0: त इहो हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि त भई चैलेंजिंग वारो जंहिं वारो कमु हो ऐं हिकिड़ो नओं कमु हो
1: बिल्कुलु
0: पर ॿिन्ही गॾिजी करे असां शुरूआति कईसीं पोइ वरी रफ़ीक साहिबु उतां ऑफिसरनि खे चई करे परमिशन वरिती त भई उतां जेको आहे सो जेके बि ड्रामा आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो हिन में जेसिताईं न्यूज़ जा इंटरव्यू थियनि तेसिताईं उन्हनि खे चांस ॾिनो वञे हाणे उन्हनि खे चांस त ॾिनो वियो पर हाणे सुवालु त उन्हनि खे ट्रांसलेशन जो न हो त पोइ सभिनी खां पहिरीं वरी रोज़ अची करे असां उन्हनि खे ट्रांसलेशन कीअं कजे डिक्शनरीअ जो उपयोग कीअं कजे त पहिरियां जेको आहे सो पंज छह साल कुझु शेवाऊं ऑफिशियली ॾिनियूंसीं छो त लिमिट हूंदी हुई
1: बिल्कुलु
0: ऐं लॻभॻि असां अहिड़े नमूने मूं ऐं वेड़े अशोक चंचलाणी बि जुड़ियो मीना शहदादपुरी थी जबरी शहदादपुरी थियो विक्रम शाहाणी वीरेंद्र थियो त इहे हिकिड़ी सॼी टीम असां ठाहीसीं टीम खां पोइ वरी इन्हनि सिलेक्शन्स कयूं सिलेक्शन कयूं त उन्हनि खे नवनि खे ट्रेंड करण जे लाइ असां कोशिशि कई ऐं तंहिंखां पोइ वरी असांजे रफ़ीक साहिब खे एज़ अ इंचार्ज करे कुझु वर्क रखियऊं त गॾिजी करे असां उहो अॼु सेक्शन तव्हां ॾिसो वेठा उहे बि न सिर्फ़ु सिखण जो मौक़ो बि मिलियो अभ्यास करण जो बि मौक़ो मिलियो ऐं मूं छह साल जेको आहे सो सिंधी न्यूज़ पंहिंजूं शेवाऊं ॾिनियूं
1: आकाशवाणी न सिर्फ़ु असांजी सिंधी भाषा असांजी सिंधी संस्कृति सभ खे हथ ॾिनी आहे पर जीअं तव्हां हेॾियूं ॻाल्हियूं हेॾियूं यादगिरियूं आकाशवाणीअ जूं

0: ऐं असांजे ॿुधंदड़नि सां वंडियूं उन लाइ असीं आकाशवाणीअ जे सॼे अमले तरफ़ां ऐं असांजे ॿुधंदड़ दोस्तनि तरफ़ां तव्हांजा तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं।
1: महिरबानी।
0: सुरहाण में अॼु अवां मुलाक़ात कई बर्ख साहित्यकार ऐं कलाकार डॉक्टर ॾेठो लालवाणीअ सां। अॼु जो कार्यक्रम बसि एतिरो ई, अवां खां मोकिलायूं था। नमस्ते।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 जून 1936 थी आपनी सेवा में रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आजे समग्र भारत में

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 जून 1936 थी आपनी सेवा में रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आजे समग्र भारत में लगभग 591 स्टेशनों नु संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत ना 92% भौगोलिक विस्तार में 99% जेटली वस्ती ने आवरी ले छे। देश ना ग्रामीण शहरी अने सरहदी विस्तारों में 23 भाषाओ अने 182 जेटली बोलियों द्वारा राष्ट्रीय अने प्रादेशिक कार्यक्रमों पहुंचाड़ी रही छे। आधुनिक समय ने मान आपीने DTH मोबाइल एप्स अने विविध प्लेटफॉर्म पर 24 कलाक आपनी सेवा में हाजर रहती भारतीय वारसो अने संस्कृति नु जतन करती आकाशवाणी ने आजे 90 वर्षे लाख लाख अभिनंदन। आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा राजकोट अने भूज केन्द्र नु प्रसारण आप सांभळी रह्या छो। बराबर 1 वागे आप सांभळशो दिल्ली थी प्रसारित हिंदी मा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और

0: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year. Announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal, RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection to 6.6% from 6.9% earlier for the current fiscal. RBI also increased CPI inflation target to 5.1% from 4.6% for the current financial year.
3: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
2: Industry body ASSOCHAM has said the RBI's decision to keep the repo rate unchanged at 5.25% will strengthen growth and business sentiments. Secretary General Asocham Thorup Sanyal said the decision reflects a balanced approach towards

चाय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव और प्रकृति का गहरा नाता है। जहां प्रकृति है वहां जीवन है, और जब इसी प्रकृति को क्षति पहुंचती है तो जीवन पर भी असर पड़ता है। प्रकृति मानव के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत कुछ देती है, बदले में मानव पर्यावरण दूषित करता है और प्रकृति का दोहन करता है, जिससे समय के साथ पर्यावरण व प्रकृति नष्ट होती जा रही है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी पर्यावरण बन सकता है। इसे संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हर साल 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जीवनदायिनी धरती को रहने योग्य बनाने के लिए हमें प्रकृति का रक्षण करना चाहिए। आज के पर्यावरण दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम सब संकल्प ले कि पृथ्वी के हर जीव को बचाने के लिए प्रकृति का हम संरक्षण करेंगे। दोस्तों, भारतीय हिंदी सिनेमा में प्रकृति के साथ जुड़े कई गाने बने हैं।

आज के जय भारती कार्यक्रम में हम ऐसे ही कुछ गाने सुनेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुकेश की आवाज में बुंद जो बन गई मोती फिल्म के इस गाने से, जिसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है सतीश भाटिया ने।

आइए अब सुनते हैं पी के मिश्रा का लिखा, ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया रोजा फिल्म का गीत, एस पी बालासुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाजों में।

अय्यूब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

फिल्म का नाम है परिणीता, आवाज है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, बोल स्वानंद किरकिरे के, संगीत शांतनु मैत्रा का।

फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल समीर के, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में कभी खुशी कभी गम फिल्म का गीत। गीतकार अनिल पांडे, संगीतकार संदेश शांडिल्य।

दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सबका फर्ज है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना। अधिक जनसंख्या, जल साइंटिफिक इश्यूज, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई और किसी भी प्रकार का प्रदूषण, ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है और पृथ्वी में उपलब्ध सभी जीवों के लिए भी खतरा है। आज हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जीव सृष्टि को बचाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। जय जवान।

जय भारती। ये था फौजी दोस्तों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भुज केंद्र से किया गया। ठीक 2:15 पे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाश।

0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
1: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2,00,00,000 से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
2: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
3: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
4: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी अरे तन छोटू पण मन मोटू अरे तन छोटू पण मन मोटू छे खमीर बनती जाती अरे भले लाग तो घोड़ो तू खेल छबीलो गुजराती भाई खेल छबीलो गुजराती भाई खेल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों
1: और बहनों અને આપણું હુરત મજામાં ને તું શું લઈ આવ્યો છો ભાઈ ધન્યવાદ દોસ્ત સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવ્યું છે તે જરા એસપીજીના લોકો આ ભાઈ કંઈ ભેટ આપવા માગે છે।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा। શ્રોતા મિત્રો, અમારા હવે પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની જાણકારી આપને આપીએ તથા પોલીસ ઉદ્ઘોષણા અંતર્ગત ખોવાયેલ વ્યક્તિ અંગેની જાહેરાત સૌપ્રથમ જાણી લઈએ હવે પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમો વિશે, જે આ પ્રમાણે છે।

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी समाचारनि सां मां ज्योति फुलवाणी सभ खां अवल ॿुधंदासीं ख़ासि ख़ासि ख़बरूं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात जे सूरत में रोड रस्ता बिजली ए उद्योगिक खिते में 18,800 रुपयन का भी वधिक लागत वाली विकास योजनाओं जो मुहूर्त कयो। सरकार पडे ही धारती सीड़पकारन सरकारी सिक्योरिटीज में सुरमाएदारी लाभ ते मुकम्मल नमूने डल की छूट दिनी। रिजर्व बैंक में का भी तब्दील न कंदे रेपो रेट 5.25% ते बरकरार रखियो। नेपाल जो पडे मंत्री शिशिर खनाल अज खां 3 दिन के भारत दौरे ते। अज विश्व पर्यावरण डी मल्हायो पियो वञे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए गृह मंत्री अवाम के शुभकामनाओं दिन। खबरों तफसील सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात जे सूरत में रोड रस्ता बिजली ए उद्योगिक खिते से जुड़ियल 18,800 करोड़ रुपयन का वधिक जी विकास योजनाओं जो शुभ मुहूर्त ए संगे बुनियाद रखी। इन मौके ते प्रधानमंत्री चयो त यह योजनाओं राज्य जे विकास के रफ्तार डींदियों ए अवाम जे जीवन के बेहतर बनाने में सहकार कंदियों। प्रधानमंत्री खुशी जाहिर कंदे चयो त विश्व पर्यावरण डींहं जे मौके ते हू सूरत में आहे जेको मुल्क में साफ़ सुथरन शहरन मां हिकु आहे। हुन चयो त समूरी दुनिया साबक ऐं साफ़ सुथरे मुस्तक़बिल ना वधी रही आहे। हिकु रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार पडेही इधारती सीड़पकारन के सरकारी सिक्योरिटीज मां सुरमाएदारी लाभ ए व्याज जी आमदनी ते मुकम्मल नमूने डल जी छूट डिनी आहे। इहा छूट हिन महीने जी 1 अप्रैल खां लागू थींदी। सरकार इन सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी नियम 2026 जारी कयो आहे। माली वज़रात ॿुधायो त सरकारी सिक्योरिटीज़ ते डल वारे कदम सां भारत खे केतिरनि ई मुल्कनि जे बराबरि आणींदो। वज़रात इहो बि वाज़ह कयो त साॻी डल छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स खे बि ॾिनी वेंदी। रिज़र्व बैंक जारी माली साल में लगातार ॿियों भेरो पंहिंजे माली नीतीअ जे जाइज़े दौरान ख़ासि व्याज नुर्खनि खे जीअं जो तीअं रखियो आहे। इन्हनि नुर्खनि में का बि तब्दीली कोन कई आहे। ॿिनि महीननि वारी माली नीतीअ जी पधिराई कंदे बैंक जे गवर्नर संजय मल्होत्रा चयो त नाणा नीति कमेटीअ सभिनी जी यकराए सां रेपो नुर्ख खे 5.25% ते बरकरार रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं पॉलिसी रेपो रेट में का बि तब्दीली कोन कई वई आहे। संजय मल्होत्रा चयो,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: नेपाल जो पडे मंत्री शिशिर खनाल अज खां 3 दिन के भारत दौरे ते रहंदो। श्री खनाल पडे मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी नींड दे भारत अची रहो आहे। इन यात्रा दौरान श्री खनाल जो नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर सा मुलाकात करण जो प्रोग्राम आहे। नेपाल जी पडे वज़रात चयो त बई मुल्क व्यापार सीड़प राब्ते तवानाई ए अवामी लागापन समेत खास खितन में सहकार के वधण के मकसद से गडियल हितन के मुद्दन ते चर्चा कंदा। ही खबरूं तवीं आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। वधीक खबरुनि जे लाइ तवीं असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। इहे खबरूं तवीं असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते बि ॿुधी सघो था। अॼु विश्व पर्यावरण ॾींहुं आहे। ध्यानु ॾियारियूं त इहो ॾींहुं मुतहद राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम जे तहत मल्हायो वेंदो आहे। त जीअं धरतीअ ते सभिनी जीवन जी हयातीअ जी हिफ़ाज़त ऐं जीवन जी अहमियत बाबति सुजागी फैलाए सघिजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ विश्व पर्यावरण ॾींहुं जे मौक़े ते ॿेलाई ऐं आबहवा बदिलाउ मंत्री भूपेंद्र यादव जो हिकु लेख वंडियो, जंहिंमें श्री यादव पर्यावरण में

0: दरपेश ईंदड़ ललकारुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ गॾिजी कमु करण ऐं अवामी हिसेदारीअ लाइ मुतालबो कयो। श्री मोदीअ चयो त इन्हनि ललकारुनि खे मुंहुं ॾियण लाइ श्री यादव कुदरती मुआफ़िक़ क़दमनि खणण जी अपील कई आहे, जेका किफ़ायती, पाईदार ऐं लंबे अरसे ताईं फ़ाइदो ॾींदड़ आहे। विश्व पर्यावरण ॾींहं जे मौक़े ते उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन चयो त वण हवाउनि जी मयार सुधारणु, वायुमंडल में कार्बन इखराज खे घटाइण ऐं आबहवा में तवाज़ुन बरक़रार रखण में अहम किरदार निभाइनि था। हिकु वीडियो संदेश में उपराष्ट्रपतिअ हर हिकु नागरिक खे पंहिंजे घर जे वेझो मुआफ़िक जाइ ते घटि में घटि हिकु वणु लॻाइण जो सॾु ॾिनो। उपराष्ट्रपति सभिनी नागरिकनि खे एक पेड़ माउ के नाम मुहिम में हिसो वठण लाइ अपील कई। सूचना ऐं नशरियात वज़ीर डॉक्टर एल मुरुगन अॼु नई दिल्लीअ में क़ाइमु आकाशवाणी अंगण में एक पेड़ माउ के नाम मुहिम जी तहत ॿूटो पोखियो। आकाशवाणीअ सां ॻाल्हाईंदे डॉक्टर मुरुगन नागरिकनि खे पर्यावरण सलामती जो संकल्प खणण जी अपील कई। इन चयो त विश्व पर्यावरण ॾींहं जे मौक़े ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह ऐं बचाव वज़ीर राजनाथ सिंह अवाम खे मणी मुबारकूं ॾिनियूं। अमेरिका जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका ऐं ईरान जे विच में ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। हुन साहिब चयो त कंहिं बि समझौते में दाइमा तौर ते ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण खां रोकणु घुर्जे। हिकु रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: कर्नाटक के पानी वसीला मंत्री रामलिंगा रेड्डीअ अॼु पंहिंजे वज़रात जे बंटवारे थियण सबबि मंत्रीअ जे उहिदे पद तां इस्तीफ़ा ॾिनो। पद्म पुरस्कार 2027 लाइ नामज़िदगी ईंदड़ महीने जी 31 तारीख़ ताईं करे सघिबी। आबहवा महकमे ॿुधायो त ॾखण ओलह बरसाती मुंद ओभरी विच ऐं ओलही विच अरब महासागर जे कुझु हिसनि, गोवा ऐं कर्नाटक जी कुझु जायुनि में अॻिते वधी आहे। अॼु तमिलनाडु ऐं ॾखण ओलह बंगाल जी खाड़ीअ में बि साॻियूं हालतूं बणियल आहिनि। घरेलू शेयर बाज़ार जी संजीदा फ़हिरिस्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 117 अंकनि जी गिरावट सां 74,243 ते बंदि थियो ऐं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बि 50 अंकनि जी गिरावट सां 23,367 ते पहुतो। नॉर्वे शतरंज जे नाए राउंड में प्रज्ञानंदा रमेश बाबूअ भारत जे आलमी चैंपियन डी गुकेश खे शिकस्त ॾेई खिताब जे दौर में पंहिंजे दावे खे बरक़रार रखियो ऐं औरतुनि जी कैटेगरीअ में बीबी सारा आउस बाएवा हिकु राउंड में बकाया रहंदे नॉर्वे शतरंज महिला जो खिताब पंहिंजे नाले कयो। आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं हिकु बार ॿीहर ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अॼु गुजरात जे सूरत में रोड रस्ता, बिजली ऐं औद्योगिक खिते में 18,800 रुपयनि खां बि वधीक लागत वारी विकास योजनाउनि जो महूरत कयो। सरकार परॾेही इदारती सीड़पकारनि सरकारी सिक्योरिटीज़ मां सुरमाएदारी लाभ ते मुकमल नमूने ढल जी छूट ॾिनी। रिज़र्व बैंक में का बि तब्दील न कंदे रेपो रेट 5.25% बरक़रार रखियो। नेपाल जो परॾेही मंत्री शिशिर खनाल अॼु खां 3 ॾींहनि जे भारतीय दौरे ते ऐं अॼु विश्व पर्यावरण ॾींहुं मल्हाए पियो वञे। ख़बरुनि जो इहो अंक ते पूरो थियो। हाणे तव्हीं सुभाणे सुबुह 8:40 ते सिंधी समाचार ॿुधी सघंदा। नमस्ते।
2: आकाशवाणीનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે।
3: શું તમે તૈયાર છો? હીટ સ્ટ્રોકથી બચવાની ગરમીમાં લૂ લાગવાથી બચવા માટેના ખાસ પગલા. હીટ વેવ દરમિયાન બહાર નીકળવાનું ટાળવું. આખું શરીર અને માથું ઢંકાય તેવી રીતે સફેદ

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 8 जून 1936 थी आपनी सेवा में रहेली आकाशवाणी 90 वर्ष थी समाज में सचोट माहिती शिक्षण अने सात्विक मनोरंजन पूरु पाड़ी रही छे। आजे समग्र भारत में लगभग 591 स्टेशनों संचालन करी रही छे। आकाशवाणी ना सूत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ने साकार करता आज आकाशवाणी भारत ना 92% भौगोलिक विस्तार में 99% जेटली वस्ती ने आवरी ले छे। देश ना ग्रामीण शहरी अने सरहदी विस्तारों में 23 भाषाओं अने 182 जेटली बोलियों द्वारा राष्ट्रीय अने प्रादेशिक कार्यक्रमों पहुंचाड़ी रही छे। आधुनिक समय ने मान आपीने डीटीएच मोबाइल एप्स अने विविध प्लेटफॉर्म पर 24 कलाक आपनी सेवा में हाजर रहती भारतीय वारसो अने संस्कृति नु जतन करती आकाशवाणी ने आज 90 वर्षे लाख लाख अभिनंदन।

0: સાથે જ ગુજરાતી ગેરફિલ્મી ગીતોનો કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત થાય છે. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. બરાબર 8:45 સમાચાર સંધ્યા અને 9 ન્યૂઝ એટ 9, 9:15 સ્પોટલાઇટ અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી થોડી જ ક્ષણોમાં રિલે કરાશે.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સી સમાચાર સંધ્યા કે સાથ મેં મુકેશ કુમાર. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया. कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा. दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं.

मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही

ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। पार्टनरशिप दैट वी हैव विद
1: नेपाल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सोनम कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी।

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया।

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका, जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो के किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है, बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए, तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है, बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

और फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

इसके बाद फिल्म मिर्जा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी मिर्जा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने मिर्जा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं।

मजेदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

नीरजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीके हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायू जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

थी सोनम कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: तो ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रही है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन, मस्तिष्क और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। आज की इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग तनाव को कम करने, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और जीवन को अनुशासित बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। मुझे बेहद खुशी है कि अब युवा पीढ़ी भी योग को गंभीरता से अपना रही है और उसकी ओर आकर्षित हो रही है। प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप का आयोजन निश्चित रूप से योग को खेल के रूप में नई पहचान देगा और आने वाले समय में यह विश्व स्तर पर और अधिक लोकप्रिय होगा। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि वे खेल भावना के साथ अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मैं सभी देशवासियों को भी ये कहना चाहूंगा कि वे अपने जीवन, दैनिक जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही एक सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव है। धन्यवाद।
1: અમેરિકા લોસ એન્જલસના પ્રતિસ્પર્ધી પેટ્રિક શેટરે જણાવ્યું કે
2: Hi, my name is Patrick Shatter. I'm from Los Angeles, California, representing the United States. I am competing in the hand balancing senior B category. This production is amazing. I didn't even know what I was getting myself into, and I'm blown away by the production value of this competition. Thank you very much.
1: માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી અમદાવાદમાં પ્રથમ વર્લ્ડ યોગાસન ચેમ્પિયનશિપ 2026ને ખુલ્લી મૂકતા જણાવ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પહેલા વર્લ્ડ યોગાસન ચેમ્પિયનશિપ સ્વાસ્થ્ય અને વેલનેસની બેવડી માત્રા લાવે છે.
3: આજ પહેલી વર્લ્ડ યોગાસના ચેમ્પિયનશિપ શરૂ હો રહી હૈ. મેં ઇસ ચેમ્પિયનશિપ મેં હિસ્સા લેને આયે સભી દેશો કે એથલીટ્સ કા भारत में स्वागत करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं. अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और भारत के इस ऐतिहासिक शहर में ये आयोजन पूरे देश के लिए गर्व की बात है. अब से कुछ दिन बाद 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा. उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा. वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है.
1: वडाप्रधाने वधुमा जणाव्युं हतुं के દરેક જીવંત પરંપરા સમય સાથે નવા તબક્કામાં પ્રવેશે છે. યોગાસન સ્પોર્ટ્સની આ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ આવા જ એક નવા તબક્કાની શરૂઆત દર્શાવે છે.
3: કરીબ એક દશક પહેલે ભારત સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કા પ્રસ્તાવ લેકર ગયા હતા. હમ પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા કો પૂરી માનવતા કે સ્વાસ્થ્ય और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते और तब यूएन में 190 देशों ने 190 कंट्रीज ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन किया. आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं. ध्यान, प्राणायाम उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है. लेकिन साथियों, हर जीवन परंपरा समय के साथ नए चरण में प्रवेश करती है. योगासन स्पोर्ट्स की ये वर्ल्ड चैंपियनशिप इसी चरण का शुभारंभ है. यह चैंपियनशिप ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तैयारी में भी जुटी हुई है. इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है योगा.

योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आज लोग ऐसे उपायों की तलाश में हैं जो उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय बनाए रख सके। योग इसका बहुत सूटेबल ऑप्शन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप के लिए सभी प्रतिभागियों को और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता। आई

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सलाम साहेब।
1: तारा साहेब छे?
0: जी ये तो सूता छे।
1: जय ने हमने कह के हूँ आवे छू।
0: साहेब साहेब
2: शू छे बहादुर?
0: साहेब प्रसाद साहेब आव्या छे।

0: गुड मॉर्निंग मिस बरुआ।
1: गुड मॉर्निंग मिस्टर। अरे तमारू नाम पूछवानू तो भूली ज गई।
0: मारू नाम प्रणव डेका छे। मने बदा प्रेम थी पलू कहीने बोलावे छे।
1: ओ तमारू नाम तो जानी तू लागे छे। अरे एक समय ना ख्यातनाम फुटबॉल खिलाड़ी पलू तमे तो नथी ने?
0: यस मिस बरुआ। चा पियो। ए ए बहादुर।
2: जी जी साहेब।

0: जाओ। तबे एक नालंदा एक तक्षशिला तोड़ी ना की
1: साहेब, अमने कड़क में कड़क सजा करो, अमे भोगवा तैयार छे।
0: साचो पछतावो थतो होय तो माथू नीचे चुकावी राखवा थी कहीं ज नहीं भले। तमने सखत में सखत सजाए करवामां आवे छे कि तमे करेला राष्ट्रीय अपराध बदल तमने देशना नवनिर्माण में
2: शिक्षण संस्थाओं सर्जन कार्य में चोतरी देवामां आवे छे कि जेथी तमारो पसीनो मोती बनीने चमके,
0: परिश्रम सूरज बनीने प्रकाशे, अने तमारा श्वास सुगंध बनीने सगळे प्रसरे।

श्री नालंदाओ आ नाटक आपे सांभळ्युं। मूळ हिंदी नाटकना लेखक हता श्री लक्ष्मी नारायण रंगा। गुजराती अनुवाद कर्यो श्री जनक दवे। भाग लेनार कलाकारो हता सर्वश्री बच्चूभाई त्रिवेदी, कीर्तार मुंशी, हरीश ककवाणी, हसमुख भावसार, एस ए कादरी तथा रमेश रावत। रजूआत करता श्री हरीश ककवाणी।